पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवै निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

इत्थे सन्यासी तपस्वी है मुखों ए पंडित मिठे वर्ष एक हों फिरियो किने नहो पर क्यों लायो कहते हैं कहती सुनी रहत को।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिक

इव जोधकार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल।

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै काल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

भया, जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया, अपै निरंजन करह लहा, सत गुर दयाल हर नाम दिरडाया, तिस प्रसाद वस पंच करे, कब कल ठकुर हरदास तनी, गुर रामदास सर अपार परी, अनभो उन्मान अकल लिव लागी, पारस भेटिया सहज करी, सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परी, मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा, चित लागा संतोख सरे, कब कल ठकुर हरदास तनी, गुर रामदास सार अपार परे, अपार परे पायो अपार, हृदय अंतर तारियो, दुख भंजन आत्म प्रबोध, मानता

माणे नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायु गुर रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पायु संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटे संजम सत संतोख सील सनाहु मुखुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागता।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै

गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुरु।

अखिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोए जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान

पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो है जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे हैं।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो सास रेख निससूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रिभवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

तेरे जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाकश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाई गुरमुख है त्याई अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

जी तारहु मानस जन्म देह निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौहों जुग गुर सेवा कर फल लहियन बंद है जो चरण सरण सुख पाव है परमानंद गुरमुख कहियन प्रताख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव

पाया, जग जन्म मरण भगा, ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै, तिन को पदवी उच भई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया, दिव दृष्ट कारण करन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन करन, प्रताप सदा गुर का घट घट, प्रगास भया जस जन कै, एक पढ़ है सुन है गाव है, प्रभाते है कर है स्नान, स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करन, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह, रहया पूर बहु विद वर्णन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, जिन्हों बात निश्चल ध्रुव जानी, ते जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्य ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आ

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सर्वर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

लाल, मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरे हो, साहन कैसा है जियो, सत साच श्रीनिवास आद

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कहो हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कहो मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कहो हर नाम बोहित बड़ो कल।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर

कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास कहो वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास कौ।

धरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहियो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणंग तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाय।

लोभ अपमान स्यों चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्ने, भाव सागर बंधियो, सिख तारे सो प्रसन्न, सिर आत पत सचो तखत, जोग भोग संयुत बल, गुरु रामदास सच सल पण, तू अटल राज अभग दल, तू सतगुर चहो जुगी, आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधिक सिद्ध, सिख सेवंत तुरह तुर, आद जुगाद अनाद, कला तारी त्रिहो लोह, अगम निगम

गुरमत ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस बखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कै भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभव उदव्यो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मलायो जय जय कार जास जागे अंदर मंदर भाग जुगत से।

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बखता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

नाम लाग जग उदरिहु जगत उदाहरण नाम सतगुर तुथे पायो अब नाही अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी जो तुर

दूत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरहु तेह जन जाचो हो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में

करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

जो लेवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग, जाना पानी ना लहां जैसेती मेरा संग।

जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फै सर्फै सदा सदा एवै गई विहाय नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए दोष ना दे राए नो मत चले जा बुढ़ा होवै गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै पूरे का किया सब किश पूरा कट वद किश नाही नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

ब्राह्मणि अंतर तिसना आग जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिल ही वाग साग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर भाई साला ही साला हना ही सच्चा साला ही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहिया कूड़िया नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है

शब्द ना रखियो उर धार तिग तिना का जीव्या कित आए संसार गुरमती पहु मन पवे ता हर रस लगे प्यार नाओ मिले तुर लिखिया जन

ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए एक उपज है।

अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करहें विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक तां का दास। माया पुयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्मल।

पुत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख किरपा धारियन जन विछुड़े आप मलाय जन नानक तिस बलिहार नै जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जमपुर जाए नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछताहे चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद गुर प्रसादी बुझी है सा धन सुती निचिंद जिन को

बिन हर शांत न आवई किसे आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार। हर कृपा कर कै बख्श लहु हौ पापी बड गुनहगार। हर जियो लेखै वार ना आवई तू बख्श मलावन हार।

आई नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाई होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण दिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कम।

करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप ओहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे सब तर

जे चलन सतगुर पाए मन मुख झूठ ना उतरै जे सौ धोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाए बुरा करे सो केहा सिज्जै अपने रोहे आपे ही दज्जै मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै नानक गुरमुख मन स्यों लुज्जै जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवेओ शब्द ना की तो विचार होए मानस जू

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए भाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सौ भाई लए हुक्म फराओ जह बसावह बैसह भाई जह भेजह तह जाओ एवड़ धन होर को नहीं भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए।

तिसना भुख सब जाय, कूक पुकार ना हो गई, ज्योति ज्योत मिलाय, नानक सुख समन सुहागनी, सच्चे नाम समाय, तुरों खसम भेजिया।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए। कै का सहज श्रृंगार करे हो।

पास सतगुर मिले जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै।

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारी कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाय वाहो वाहो सत गुर पुरख है जिन सच

जिसनो समत सब कोए, वाहु वाहु सतगुर निर्वैर है, जिस निंदा उस्तत तुल होए, वाहु वाहु सतगुर सुजान है, जिस अंतर ब्रह्म विचार, वाहु वाहु सतगुर

नानक सतगुरु वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई अन दिन रह आनंद नानक सहज समाई है।

कर्म कार नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

भव जल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी, अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए, सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे, दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटंब है, माया मोह वधाए, दरगह लेखा मंगी है।

हुक्म आरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया फल पाए सदा

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर शरनाई उबरे नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल।

हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लगई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलूक महला नौवा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन। बिखियन स्यो काहे रचियो निमुख न होए उदास। कहो नानक भज हर मना परै ना जम की पास। तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं

कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हर

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

बनोदा गावहै सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औगुजरी

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुख।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल बढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

ते सूचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगह जोध अपार।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पव।

मत देख फूला विसरै, तेरा चेतन आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपुछ देखिया, अबर नाही थाओ रहाओ, धरती ता हीरे लाल जलती, पलग लाल जुड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोह, करे रंग पसाओ, मत देख फूला विसरै, तेरा चेतन आवे नाओ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ, गुप्त प्रकट होए बैसा, लोक राखे पाओ, मत देख फूला।

मत देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पौन पीण अपयाओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रसे जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिका बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

बिन शब्दे परमाई है, दुबदा डोबे पूर मन रे, शब्द तरो चित लाए, जिन गुरमुख नाम ना बूझया, मर जन्म आवे जाए। रहाओ तन सूचा सो आखिए, जिसमें साचा नाव, पै सच राती देहोरी, जेवा सच सुवाओ, सच्ची नजर निहालिए, बौड़ ना पावे ताओ, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जलते ते पवन साजया, घड़ घड़ जोत समोए, निर्मल मैला नाथिए, सब दरते पद होए, यो मन साज संतोखिया, नजर करे तसमाहे, पंच भूत सज पैरते, जोत सची मन माहे, नानक अवगुण विसरे, गुर राखे पद तागे, श्री राग महला पहला, नानक बेड़ी सच की, तरिये गुर विचार, एक आवे एक जावही, पूर परे अहंकार, मन हड मती बूढ़ी है, गुरमुख सच सो तार।

पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है, गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया, पार ना परम तिनाहा, हर जब लहा अगला निरपो हर मन माहा, त्री राग मखला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा, नाठी एड़े दिन चार, पबन केरे पज्यो, टाल टुल जुमन हार, रंग मान ले प्यारिया, जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके।

दूर आपे ही आपे मंज मियानो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहां करे मनमान देमन हारे कहे हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कहे कहे क्या होए आपे सच पावे तिस

राजकुमार बिन सतगुर सुख न पावई, फिर फिर जो नी पाहे। हारे हार कंठ जी ने पहरिया, कुरचरणी चितलाए, तिना पिछे रिद सिद फिरे।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

अंतर तेरे हर बसे, गुर सेवा सो पाए अरहाओ। सच बाणी सच शब्द है, क्या सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे, हम में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है, ता पाए मोख द्वार, हम में विच जग बिरसदा, मर जम्मे आवे जाए। मन मु शब्द ना जाननी, जसन पद गवाए, गुर सेवा ना पाई है, सच्चे रहे सुमाए। शब्द मने गुर पाई है, विचों आप गवाए, अनदन पद करे सदा, साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वसया, नानक सह सुमाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो, से दुखिए जुग चार। कर हुंदा पुरख ना पछाणिया, अभिमान मुठे अहंकार। सदगुरु क्या फिटकया, मंग थके संसार। सच्चा शब्द ना सेवयो, अब काज सवारण हार। मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर, शब्द रहा परपूर। अरहाओ सच सलाहन से।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत अपनी खेती रख ले।

वजी चौजुगी सटो सत सुनाए होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए इनको मैल खदूर है जो सच रखे लिवलाए नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए पूरे भाग सत संगत लह सगुर भेटे च से आए अनदिन नामे रत्या दुख बिख्या विच हो जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइन हर राख्या उर तार सच्ची बाणी सच मान सच्चे नाल प्यार मन मेरे होमे मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार हरहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रव्यापे लहे मिलाए अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ न पाए जिनको पूर्व लिखया सतगुर भेटिया तिने आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुवाए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए नदर करे प्रभ अपनी आपे लहे मिलाए सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पे आ जाए पापो पाप कमाऊं दे पापे पचे पचाए तो प्रण दर न आवई मन मुख बूझ न पाए।

लाज रुकाए गुर मिठा माया पसरिया मानुख लग माकी पते पचाए भाई रे मैं मीत सका प्रसोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए हरहाओ गुरमत हर ले उबरे लिप्त रखे शरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पद पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप लय गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाकन कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लवलाए अनख तुनी दर वज दे दर सच्चे सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाया तिना सबको कहे साबास इनकी संगत दे प्रभ मैं जाजक की अरदास नानक।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिव लाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता ओ प्रमणो ना विसर जिन सब किश

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवां। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुख उजला

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेस सच स्यों मरे न आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै

निर्मल तिस बिन रहन ना जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली हुई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए। इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडार।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, धूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

सबसे दे आधार सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो वीचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल हरहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़भागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सती सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम पार गुर की महिमा अगम है क्या कथ है कथन हार जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सते नाए गुर के चरण सरेवण तीर्थ हर का ना।

आवे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अवरया दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानी है।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारे अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार। दू कणो दोहा गणी ना कर सेज पतार, मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। एक तागे रल मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वाह पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है बिन घर भगत प्यार।

राम नाम मन विद्या गुर दिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सज पाइए दुर्बख्श ना मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़ कड़वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरलाता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा तार पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन गुर भगत न होए आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोए हर जू सच्चा सच्ची बाणी सत मिलावा होए भाई रे भगत हीन काहे जग आया पूरे गुर की सेवना कीनी बिरथा जन्म गवाया हरहाओ आपे हार जग जीवन।

सदगुर सेव गुण धान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सख हर जीओ मेरा अंते होए सखाई पेयड़े जग जीवन दाता मानमुख पत गवाई बिन सदगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई पेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवे सच्चे सच सुमाया आपे नदर करे पाओ लाए गुर सबदी विचार सदगुर सेवे सहज उपजे होमे तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उर तार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधान हर मन वसे होमे दुख सब जाए।

तेरे अंतर शब्द बसाया सईयां से सोहागनी जिन सए नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तो तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। यो तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुरु मिले, सो हर हर नाम सुमाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्र, हर चलन वेला आंदी। कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहन वेखांदी। हर सेव खिन खिन टिल मूल ना करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो, जित मिलहर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पैरे, सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उदरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दी नी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुध बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जनते वस किश नाहे। कहो नानक प्राणी पहले पैरे, तर पाए ता उदरे माहे। दूजे पैरे रहन के वन जा रहा मित्र, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी वन जा रहा मित्र। मन मत्ता अंग में बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा। पूरा सतगुर कभू ना सेवया, सिर ठांडे जम जंदारा। धर्म राय जाब पकड़ बवरे,

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया

जो बारक माता संहारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूरा मेहरबाना सद बलिहार जाएगे कुरबाना रैन दिनस तेस सदा त्याई जे खिर में सगल उधारे जियो राख लिखे सगले प्रव्यापे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मंत्र हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माध मोहल्ला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रप्यारे से अस्तल सोयन चौबारे जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बहार नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली ज्ञान विसु की वाड़ी जियो संता से ती रंग न लाए सागर संग वे कर्म कमाए दुलाभ दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप तो पाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला हर कृपा नान गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो माझ मोहल्ला पंजवा चरण ठाकुर किरदे समाणे कल कहे सब दूर पयाने सांत सुख सहत उपजी साधु संग ने मासा जियो लागी प्रीत ना टूटे मुले हर अंतर भर रहा पर पूरे सेमर सेमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फासा जियो अमृत वर्ख अनहद बाणी मन तन अंतर सांस वाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सगुर किया दिलासा जियो जिसका सा तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रसंग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माझ मोहल्ला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस भया सो साचा हर घर नाम संभाली जियो जिसके से

प्रकाश हुआ जी अन दिन हर गुण गावनिया रखाओ तन मन खोजे ता नाओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

अग्ञानी अंधा मगना जाने, फेर आमन जामने आ, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, होमे मेरा ठाकुर खाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलामने आ, होमे मार मन मसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ध्यावने आ, जीवन मरना सब तुदे ताई, जिस बगसे ते दे वडियाई, नानक नाम ध्याए सदा तू, जमन मरण सवारने आ, माज महला तीजा, मेरा प्रभु निर्मल अगमे पारा, बिन तकड़ी तो लै संसारा, गुरमुख होवे सोई बूझे, गुण कह गुणी समावने आ, होवारी जीव वारी, हर का नाम मन सामने आ, जो सच लागे से अनदन जागे, दर सच्चे सोभा पावने आ, रहाओ, आ सुने ते आपे वेखे, जिसनु नजर करे सोई जन लेखे, आपे लाए लै सो लागे, गुरमुख सच कमावने आ, जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी, पूरे कर्म मलामने आ, कई अड़े तन अंदर सुती।

कीमत नहीं पाए, सब सलाए अंत न पारा वार, मेरा प्रभु से बख्शन हार, गुर मिले सब मतबुद होए, मन निर्मल वसे सच सोए, साज वसे साची सबकार, उत्तम करनी शब्द विचार, गुरते साची सेवा होए, गुरमुख ना पछाणे कोय, जीवे दाता देवनगार, नानक हर नामे लगे प्यार, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुरते ज्ञान पाए जन कोय, गुरते बूझे सीजे सोय, गुरते सह सज विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिले गुर आए, साचे सहज सा सुमाए, हरहाओ गुर मिले तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते साथ वसे मन आए, गुरते पवित्र पाम सुच होय, गुरते शब्द मिलावा होय, वाहिगुरु सा परम भुलाई, बिन आवे बहुता दुख पाई, गुरमुख होवे सो नाम त्याई, दर्शन सच्चे सच्ची पद होई, किसनु कहिए दादा एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे सा सुमावा, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होय, सच निवास करे सस होय, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सबके साचा आपे आपे, कर्म होवे सत्संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुथाए रखाओ, जलो ए जेवा दूजे पाए, हरसना चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नारे दुखिया चलिया रोए, रसन हर चाख्या सह सुभाए, गुर कृपा ते सच सुमाए, ताते राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार, नाम सुमावे जो पांडा होए, ऊंदे भांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जे शब्द प्यास, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साधना पाए, होमे विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिनना प्यार, साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे, मन ताराता नाम सुहावे, हरहाओ एक गावे एक भगत करे है, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पिर रखे असदा और तार, भगत करे मूर्ख आप जिनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे, नचे टपे भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वचन भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचू आप खोए, मेरा प्रसाचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे घर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनु बख्शे दे वडियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कुमाए, तास मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मिगदारा, गुर अंकसमार जीवालन गारा, मन असाध हदे जन कोए, अचर चरे तन निर्मल होए, गुरमुख यो मन लया सवार, होमे विचो तजे विकार, जो तो रखेन मेल मिलाए, कदन बिछड़े सब सुमाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख ना पछाणे, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, होमे विच सब जग बहुराना, दूजे पाए परम भुलाना, बहु चिंता चितवे आप ना पछाना, धंधा करते अंदर विखाना, हिरदे राम दमो मेरे पाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई रखाओ, गुरमुख हिरदे जन राम पछाता, जग जीवन सेव तुचारे जाता, होमे मार गुर सब पछाता, कृपा करे प्रभु कर्म विधाता, सेजन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, तावत वर्जे ठाक रगाए, नाम नान दे गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसे मन आए, राम राम करते हैं तुग सा शरीर, अंतर वसे ना लागे जंपीर, आपे साहेब आप जीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, सो क्यों विसरे जिसके जी प्राना, तो क्यों विसरे समय सुमाना, जित सेवे दर के पद परवाना, हर के नाम टों बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ, रहाओ तिन तू विसरे जे तुझे आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मानव अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुट्ठा से सतगुर सेवा लाए, जिन एक मन तुट्ठा
ਤਿੰਨ ਘਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿੰਨ ਹੋਮੇ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੂੰ ਅਕਥ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਹੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨੈ ਪਾਹੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ, ਰਖਾਓ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾਈ।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, कथनी करे तै माया नाल लूझे, अंध अग्ञानी कदे ना सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिन

प्रगट पई जप नाम मुरारा शिव सगत मिटाइया चूका अंधियारा गुरमस्तक जिन को लिखया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाए गए संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन किसा ना जीवती गुर मिल्यो हरस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गद कीनी हर हस गुर ते पाया मेरा मन तनलीनी धन तन गुर सतपुरख है।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया ओ दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मनम गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो क्या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुन वडाहे का डंडौत।

हर जन घर घर नाम समान दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

मुख मस्तक पास भागे, राम गुरमत घर लिव लागे रखाओ, धड़का रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवो काड गुरु को, मेरा प्रम पौ गुर बचनी भागे, अंधेरे दीप के आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिरस बनासो, कर वस्तल ही मन जागे, साकत बद कमाया तारी, तेन जम जो हुन लागे, हुन सतगुर आगे सीस ना बेतिया, कोई आवे जाए अपागे, हमरा बिनो स्वरूप ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लज पाद गुरु है, सिर बेत्यो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, आम अहंकारी अहंकार ज्ञान मत, गुर मिले आप गुवाए।

की और मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगोरे आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर है गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जे वाह हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप

हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कड़ भोगदा मेरे गोविंदा, हर पेरसिया भोगी जियो, हर सुजान न भुली।

चाखे सार जागत होए रहे बिस्मार अमर तरना पियो प्यारी एर सराती हुए त्रिवतारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख।

जुगत जित कर पीज पाए लगो है मेरा तेर कौन सो जान जो सौदा जोर मैल सा का किन बिद पावे कौन सो बिद जित पीतर बुलावे तू वड़साहो जाके कूड़ बन जा रे कौन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत ने कर पाया अमोर रतन साध दिखलाया हर कृपा जामे ले साहे कहो नानक गुर के वे साहे गौड़ी महला पंजवा गुवारे री रैन दिस रहे करंगा प्रभु को जाने सदकी संगा ठाकर नाम की उनवर्तन तृप्त अगामन घर के दर्शन हर संग राते मन तन घरे गुरपूरे की सरणी परे रखाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन रंकारी हर शोक दुहू ते मुक्ते स अलिप्त जो घर जोते जिसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का उए

है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सा गुरते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुर्ग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेग शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहला पंजवा, नैनो नींद हर दे टिकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस गृह में कोई जागत रहे। सावत वस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तू सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संगन पावे बोजोन पवाइए। सील संजम प्रे

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा, जा को तुम पै समरथ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा, माधव जाको है आज तुम्हारी।

मिल संयोग हुक्म तू आया रहाओ। एका माटी एका जोत एको पावन कहा कौन रोत। मेरा मेरा कर बिरला ही मरणहार यो जीरा नाही। कौ ना

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जद का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रखाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन्म होवे परवान, गुर पारवन कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर चो लिम लागी।

सधी सोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना,

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर संघ राते पाए ना जले, हर संघ राते माया नहीं चले, हर संघ राते नहीं डूबे जला, हर संघ राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संघ राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ। खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार। जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी। हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल। मोय निर्गुण मथोरिया तू सदगी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे। तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे। माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार। सा संग नानक भजे हितरिया संसार। गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे। सर्व कल्याण सुख सुध पावे हरहाओ। बन मन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी। जिन घर पाया से वडभागी ब्रह्मादक सनकादक चाहे। जोगी जति सिद्ध अर आहे जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे। ताकि सरंजन बिसर तनाही वडभागी घर संत मिलाही। जन मरण ते मूले नाही हर कृपा मिल प्रीतम प्यारे। बिनो सुनो प्रभु पूज।

पार ब्रह्म रंग राते छोग सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते जगते उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परोता जीवा चरके संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राजोबन अब जो दिस सबके जुग में काटिया नाम दान सर नपन निर्मल यो नान खर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जो सुन आयो गुरते मोको सब गुर शब्द बुझायो रघाव नौखण पृथ्वी तन में रविया निमख निमख नमस्कारा दीख्या गुर की मुंदरा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पंचेले मिल पाए एकत्रा एक जके भजकीये दबै रागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थीये परम जराय तिराई बिभूता पंथ एक कर पेखिया सह सुसु की नी पूता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पो नाही ता आसन बांधियो चिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत ना मन पानी ऐसा जोगी वड़पागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो जि मूर्त की नानक तिस पग चट गौड़ी महला पंजवा अनूप दार्थ नाम सुनो

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर्प उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुखे ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ताकी ओढ़ भी जय रे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड, हर ताको नाम ज पी जय रे रखाओ, मन की मत त्यागो हर जन, सुगम भूज सुख पाइये रे, तो प्रभ करे सोई फल मानो, सुगत ओई त्याई गे रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द पंजन स्वामी, जे पावित से निवाजे रे, सब को माल पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते, पूरे और तनागर रे, जाज जाते नाम तेरा स्वामी, कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई, जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी, महला पंजवा, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, हर घर कबूरा मनो विसारे, ईगा उवा सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रत पारे रखाओ, महा कट काटे पीतर, रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी, जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख, हजल पारे उतारे, चरण कमल आरा तुम मन में, जमकी त्रास बेदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर, जुए जन्म नगारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे, नानक सद बरेगारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना, जीत जन रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बो लोग भोग, हैबर गैबर राज रंग, जा चले गए मूड रंग, चुवा चंदन दे पूलिया, सो तन तरसंग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पंजवा, मान कर तरबे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ, कल कालक अंधियारिया, गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी, उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया, गुर पेड़त प्रम पखोया, कहो नानक एक तिहाया, काल कर नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा तारी गुरे टेक रखाओ, अंग जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या, बगसी जो मिल एक नाम, सोग सहज आनंद विश्राम, प्रवके चाकर से पले, नानक तेन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा, जीरे ओला नाम का, अवर दे करन करामनो, तिन मैं पौ है जाम का रखाओ, अवर जतन नहीं पाई है, वडे पा घर त्याई है, लाख इकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए, अंग बुद्ध कर्म कुमामने, ग्रे बालू नीर बगामने, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा, बार ने बलिहार ने लख बरिया, नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया, रहाओ करन करावन तुही एक, जी जंद की तुही टेक, राज ओम प्रा तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुनी, ईगा ऊगा तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रसुजान, नांग तकिया तुही तान, गौड़ी महला पंजवा, हर घर हर आरा दिए, संत संघर मन मसे, पर मोह पो सदिये रहाओ, वेद पुराण सिमरत पने, सब ऊच ब्राजत जन सुने, सगल स्थान पे पीत कीन, राम सेव कह रहत कीन, लख चौरासी जून फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बाल बुस जान पहो में रही, हर सासरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाई है, नीत नीत घर सेवी है, सास हर त्याई है रखाओ, संत संघर मन मसे, दुख दर्द अनहेरा प्रमन से, संत प्रसाद हर जापी है, तो जन दुख ना व्यापी है, जाको गुरु हर मंत्र दे, तो उबरिया माया अगनते, नानको प्रमया कर, मेरे मन तन वसे नाम हर, गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम, ईगा सुख आनंद खना, आगे जी के संग काम रखाओ, कटके तेरा

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछ न बसाई, जोगी जतन करत सब हारे,

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या, रखाओ एक सुख मान्या सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पे सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, रस संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, सही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमती नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तरम साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नही निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मन मुख चील कुष्ट बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सा सुमाए, जमण मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तरण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबह।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, तरैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अफर काल पूर सिर मारे, निचल एक सच्चा ससोई।

दोराव सहजे होवा साधु संग सहज मिलो पार ब्राह्मण संग सहजे गृह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन कीनासी जाके से मन पया आनंद ताको फिटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सह कथा में आत्म रसया ताके संग अबना सी वसया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहद शब्द बजाया सहजे रोण चुनकार सुआया ताके कार पार ब्रह्म सुमाया सहजे जाको परे हो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सज तर्मा जाके सज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कलत्र कुटाम संग जुरिया भोजन अंग प्रकार बो कपरे सर पर गमन करें गे बपरे कम स्थान जो कहू न टरे कामन शब्द जित दुर्मत हरे रगाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिन सबताला गिर कर तारण गगन अर तारे रस पवन पावक नीरारे दिन सरायण वर्त अर पेदा सात सिमरत दिन सह गए बेद तीर देव देवरा पोथी माला तिलक सोज पाग होती धोती तो डंडाओ प्रसादन भोगा गवन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीजे पासारा बिन सजाए गो सगल आकारा सह सिवत भगत गयाना सदा आनंद निचल सथाना ता संगत साध गुण रस अनपो नगर ता सदवस तय पो परमा सोग न चिंता आवन जावन मृत न होता तय सदा आनंद अनहत आकारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान सा संतर गौड़ी मोहल्ला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोय जे दुबदा मार गवावे इसे मार राज जो कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पो नाहे जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दर्घ सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हो वै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निचल तनी जो इस

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सखा हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सासना कड़ी विसरे पल मुहूर्त दिन राते नानक सास।

तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर है। गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुख दाते हो मिचड़ी बुरे आरे। बिनवंत नानक दया तारो तार आवो ना प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी जमीत प्यारे जो प्रादेश संदेसा। अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै तंग प्रभु दुखाया, खिरमाए सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया। दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा, बिनवंत नानक तंत मिलया लोड़ते हम जैसा। मेरे मान अंध फया जियो वजी वाधाई, हर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, था मीत बंदप हरख उपजया दूत थाओ गवाया। अनहत वाजे वजे कर्म प्रसंग सेज विसाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलया कंस गुदाई।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक है सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तद्दा।

पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्मत मोयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे कुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोय पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताके नित न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रवे आप पास आपन हो करे नानक बिन हर खा कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेबद कथु ना छूटी है साकत तेऊ कुमाए।

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखो तुर जाके हर संप नानक करता के श्लोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म में मरना ज्यो जो हुक्म तेवे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर अथाह दूसर आई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो मनहार होश आया ओवाका अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने फट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस हे जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदन नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम हे राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर के दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही वासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

करने हार न भूलन हारा, काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उदयान परंत पछतापे, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो तो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिरछ तरह, टूट न जाए पंडार, हर घर जपत अनेक जन, नानक नाए सुमार। पौड़ी खखा खूना कछ नहीं, ते समर्थ कै पाहे, जो देना सो दे रहो, भावे तै ते जाहे। खर्च खजाना नाम तान, या भगतन की रास, हिमा गरीबी अंध सहज, जबत रह गुणतास। खेले बिगसे अंध स्यो, जक होत किरपाल, सदीव गुनीव सुहावने, राम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना डान ते, जाको नदर करी, नानक जो प्रापाणिया, पूरी तिना परी। श्लोक गण मिन देखो मने माहे, सर पर चल नो लोग, आस अनित गुरमुख मिटे,

साधु संगत तव बस जो आपन होए दयाल टोहे टाहे बो पावन बिन्नावे सुख नाहे तले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप विनाशे कद के श्लोक ठाक न हो तीतन हो दार जे हो वो सो प्रसन्न जो जन परम अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठा है नाही जो सगल चाके के लबटाही ठहक ठहक माया संग मुए होआ के कुशल न कत हु हुए ठाण परी संते संग बसया अमृत नाम तहां जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक ओआ का मन शीतलाया श्लोक डंडौत बंधन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा इहो नहीं जय डेरा तय जान ओआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाले ताक का तसू नहीं संग चाले ओआ डेरा की सो मित जान जा को दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे तो टहेद अब टह परे साजना सुरनाए दुके फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाहे सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम साही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मै ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

रहो सुजाना, जो दीनों सो एक कहे बार, मन मूर्ख कह करे पुकार, जो मांगे तो मांगे भी है, जाते कुशल न कहूती है, मांगन मांगता एक माक, नांग जाते परे पराग श्लोक, मधपुरी प्रदान ते गुरपुरे मनमंत, जे जान्यो प्रभे अपना, नांग ते भगवंत पौड़ी, मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत सा संग पतियाना, दुसुवा के संत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहूर निर्लेप, पूर्ण कटकट पुरुख बसेख, हुआ रसमय तवाहू सोपाय, नानक लिप्तन ही ते माया श्लोक, यार मीत सुन साजनो, बिन घर छूटन नाहे, नांग ते बंधन कट्टे, गुर की चरणी पागे पवड़ी, यैया जतन करत वो विधिया, एक नाम मिन कह लो सिधिया, याउ जतन कर हो छुटारा, वाउ जतन सा संगारा, या उबरन तारे सब को, वाय जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तरन सुमराथा, राख ले हो निर्गुण नरनाथा, मान भय क्रम दे आप जनाई।

आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक।

भगवान करण करावन हार सुवामी सगल कठा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनेया तो प्रसदा सुमाल जिनकी ते चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू सासवार सीगारेया सर्व अग्न में जिने उबारेया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सायन मुख प्याओ बैठ तो दायन इहो निर्गुण गुण कशु न बूझे बक्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद थार ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप कर्ण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभ आपे।

सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोड़।

सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन

प्रवते हुए प्रम है सुमत ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते तुम प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्मरस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी

रंगस कभु निंद चिंद व्यवहार कभु ऊपकस पयाल कभु बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभु नित करे बोपात कभु सोए रहे दिन रात कभु महा क्रोध विकराल कभु सर्व की हो तरवाल कभु होए बह बड़ राजा कभु पेखारी नीच का साजा कभु अब कीर्त में आवे कभु पला पला कहावे जो प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभु होए पंडित करे बखियान कभु मोन तारी लावे ध्यान कभु तड़ती स्नान कभु सिर साधक हो ज्ञान कभु कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

तेन पुरुष का उत्तम कर्मान योगज करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओ सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व

संतन कर पाया तज अपमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतह संचाल अवरते आग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दर गए सोय यो वापार विरला वापार नानक ताके सद बलिहार चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवावड भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाईए अनक विघन ते साधु राख हर गुण गाए अमृत रस चाख ओढ गई संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सरबन दान जाकी दृष्टि मागे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस तिसका ओ करने जोग जिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊज निर्मर ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन।

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अवनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत या पे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सोनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सा पावन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सा महे सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सा पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर दे परवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकि गद होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जोत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझत आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के बदन पदार्थ लहे वे दाते दो कटनहार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदि सच जुगादि सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सस परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यामनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोय सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन करामन तिन मूल पछानिया जा के हृदय विश्वास प्रवयाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया है ते निरप होए बसाना जिस ते उपजत सुमाए सुमाना।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन घर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोबा को करे पली करनी सा सोबा पजहर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मैं हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कह नाय दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलहो में कड्ढे तोय, सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई, लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी, साराही सच सालाना, सा सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे, सा सच्चा हरख वाले, सा सच्चा जिनी अराध्या, थे जाय रले सच नाले, सा सच्चा जिनी ना सेवया, थे मनमुख भूड बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे, ज्यों पीते मद मतवाले, वाले,

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना होवी बगला है, बे साजना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे संसारे की।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना

कबीर मिल अंत की बेला, गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ, हम अपत अपनी पद खोई, हमरे खोज परो मत कोई रखाओ, हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू सो नाही, पात अपात ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज, को कबीर पधर परवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जाओ पाइये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

रे जन मन मध सुन लाई है, चतराई ना चतुर्भुज पाई है रखाओ। पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले रग राया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जे कुल पूतना ज्ञान बिचारी विधवा कसना पई महतारी जे नर राम भगत ने साधी जन्मत कसना मो अपराधी रहाओ मोच मुच गर्व गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमो ना मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुख हमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही।

या तत लियो शरीर बिचारी। कहे कबीर ठग सो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। आ मोको पए राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गद पाई। हरहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सदगुर कीनो पर पुकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत। माया तप्त बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई। कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रमणी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई। कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने ना होई गौड़ी। झगड़ा एक न बे रहो राम, जो तुम अपने जन सौ काम। हरहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कै रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया। कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। अराग गौड़ी चेती, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। सबे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी। हरहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा। आंधी पाचे जो जल बरखे, ते तेरा जन पीना। कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सदगुर प्रसाद। हर जस सुने न हर

चल आप गए और न हूँ काले शाड़ को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हूँ को कयो न माने आप गए और न हूँ खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे आवर नभस्त आप है काने तिनको देख कबीर ले जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को मुए सराध कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसे।

को सिरसा परया मन बौरारे नाचो कर कर बार जो नलनी छूटा गयो मन बौरारे माया यो व्यवहार जैसा रंग सुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ कने मन बौरारे पूजन को बोदेव कहो कबीर छूट नहीं मन बौरारे टूटन घर की सेव गौड़ी अग्न न दहे पवन नहीं मगन है तस्कर नेर न आवे राम न तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार ए सार तन कहिए जो सो प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लइए हरहाओ इस तन कारण से संकादक खोज पै उदासी मन मुकंद जे बा नारायण परे न जम की फासी निज तन ज्ञान पद गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पो पग कहे कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असभस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी जो कब के कर मुष्ट चरण की लुब्ध न त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर गरे परे हो भगत बेन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बेन कही न सच रहो रहाओ जो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने न कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो या तान जोबन आर सुधारा पेखन को जो दयो तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औध अनल तन तिन को मंदर चौध ठाट ठयो कहे कबीर ऐसा कर तरण को मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोंग में उरतब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर नटायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस, रमैया गुण गाइये जाते पाइये परमन धान, रखाओ क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यों विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार, राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और, रखाओ और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तय रची पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे, रहो कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊं रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो, रघाओ बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बेपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना, रखाओ ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुगलो तंदा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम, पलट होए नाचो या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे पांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ संधौरा, रहाओ काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार, रखाओ नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दस नाही, तब्यो नंद।

कुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमारा मीत निंद कमाए हमारा चीत निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोर निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया अरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कहे कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई अब मान जागत हो रे पाई गाफल हो के जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तौले प्रगास उजारा नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणा ना रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्याना ना बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जाना ना एक सुमात्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना राग गौड़ी पूर्वी बामन।

चरलोत्र साब कश इन गीम आ गए, ए अखर खिर जाएंगे, ओए अखर इन मैन आ गए, जा बोल तय चर आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बड़क बीज मै रव रहे हो, जा को तीन लोग विस्तार, अले लहंता पेद शय, कश कर पायो पेद, उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद, तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू बेल पुराण, मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान, ओंकार आदि मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा, हर देता कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा, खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दैद सतावा, खसमे जान खिमा कर है, तो होए नख्याओ अखे पदल है, गग्गा गुर के भजन पछाना, दूजी बात न तरई काना, रहे बेहंगम कते ना जाई, आगे गह गह गगन रखाई, तग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे कड़ कभे न होई।

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

ना तरखरा हृसे गैराय, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का वास, गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सूदा करे, बृहस्पति दिखिया देव बिहाय, तीन देव एक संगलाय, तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अहस कसमल तो वे नागे, सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप आप स्यों लड़े, सुरखी पंचो राखे सब, तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे, थावर थिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए, बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जावला कट में दूजी आन, तौलो महल ना लाभे जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग, राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले, राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा, ब्याल अजामल तारियले, चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे, औ बल बल जिन राम कहे, दासी सो जन बिदर सुदामा, उग्रसैन को राज दिए, जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेउ तरे, राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोत सोज दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे नाम सारो मैं जन तेरा, रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलंबा, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तेठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खोब ना खता न तरस जवाल, आ मैं खूबतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, रघाओ कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेम एक सो आगी, आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे, कह रविदास खरा चुमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो, काट आव काट डूगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सुए कबेन।

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार, सुध कमन पर होए बो, सुज कुंचर बेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार, पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मान मन गी मिले, छुटकत बज्र कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुर निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, तारी ना टरे परम पास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख, निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं, गुर प्रसाद, राग अस महला पहला, कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह, सो कर केह, जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख, केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिसो कही है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनु पौन पानी बै संतर, गावे राजा तर्म दुवारे, गावन तुदनु चित गुप्त लग जानन, लिख लग तर्म विचारे, गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारे, गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे, देवतिया दर नाले, गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनु साध विचारे, गावन तुदनु जति सती संतोखी, गावन तुदनु वीर करारे, गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर, जुग जुग बेदा नाले,

त्यावे तो जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की वासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे घर पूजा जी तब तापे जपे बेअंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे घर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझे अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग ऐसा मोहल्ला पहला चौप दे कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई केवड वड्डा डीठा होई कीमत पाए ना कह आ जाए।

नदर करे जो कुछ करना सो करया अवरण करना जाई। जैसा वर्ते तैसो कहिए सब तेरी वड्याई। काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है। आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ। होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तब ताओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने सालाह। और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल। पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत। बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह। ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ। गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर। ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला। पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया। अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया। क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। हरहाओ जी उपाए जुत खत कीनी काली नथ क्या वड्डा पाया। किस तू पुरख चोरू कौन कहिए सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटुंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया। आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा पाया। रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया। कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्तारी। आराम ना फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजे। शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई। अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है। टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोड़े माया के लाहे। सर्ब जोत रूप तेरा देखया सगल पवन तेरी माया। हरारे रूप निरालम बैठा नदर करे विच छाया। बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा। शब्द अनाहद सो तो रता नानक कहे विचारा। आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार।

बिन कर्मा कैसे लेगी, जेते जी तेते सब तेरे, बिन सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, बिन नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही, कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुछ पाती, हर नामा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ, बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, उत्ती टिक्का नाम सुमाल, ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल, इन्ने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ पागे, पारू रश विचोर न लागे, तिलक ललाट जाने प्रावेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक, आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच ना

सोई जन जाने, हर गुण सदगी आख वखाण, जिन घर सेवया तिन सुख पाया, सहजेगी घर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा, किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तड़ा रहया सुनाई, हम हरसों तड़ा किया मेरी घर टेक, मैं हर दिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिनसों तड़े करे से जागे, चूड़ तड़े कर पछो तागे, थेर ना रह मन खोड़ कुमागे, हम हरसों तड़ा किया इसका कोई सुमरथ ना है, ये सब तड़े माया मोप सारी, माया को लूजे गावारी, जन्म मरे जुए बाजी गारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए, जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए, हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे, पराया शिद्र अटकल है अपना अहंकार बदावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म साब सिट जिने आवे, आसा महला चौथा हिरदे सुन सुन वर अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पैना, एक और अवरया कट अंतर, मुख बोलो गुर अमृत बैना रहाओ, मैं मंत्र प्रेम महा बैराग, सगुर पुख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिकमाया, पाग ही नहीं सदगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा मेरे मंत्र प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुसार, नाम जपो मेरे सज्जन सेना, नाम बिना में अवर न कोई, वडे पाग गुरमुखर लेना रहाओ, नाम बिना नहीं जीव्या जाए, वडे पाग गुरमुखर पाए, नाम हीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, वड्डा वड्डा घर पाक कर पाए।

जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभ पावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अनग प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रप तृष्णा ना जायस बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो ना कोय जिस मस्तक भाग तिन सदगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रमिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन

बिगड रूप मन में अवमान तो नी स्वरूप सुजान बचकन आत दरबे मुहिफाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसार कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गरबे मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे पुगे पोग आचार करे सोभा में लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चिंडा आवर जोन तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी सोयना रूपा तुझ पै दाम सील बगारियो तेरा काम जा को दिट मया हर राय साबंदी ते लई छड़ाए साध संग मिल हरस पाया कहो नानक सफल ओ काया सब रूप सब सुख बने सुहागन अत सुंदर बचखन तू रहाओ दूजा आसा महला पंजवा एक तुके दो जीवत दीसे ते सर पर मरना मुआ होए तिस निचल रहना जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम अब खुद मुख पाया गुर सबदी रस अमृत पीवे रहाओ काची मटकी।

मिल सतगुर धन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई, पाए न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ टोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रह अघाय, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस धन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लके का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ दिनते सरपर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल

रब रहे प्रभु सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आव, त्यावो गावो गुण गोविंदा, आत प्रीतम मोहे लागे नाव, रहाओ तृप्त अगामन साचे नाय, हर सड मज्जन संत तूराय, सामे जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास अगल का छोड़ अब महान, नानक कौ गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास पई मधपूरी, ताते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़द कोर अंध कूप मह, निकस्यो मेरे भाई रे, रहाओ मां अगा अगन का सागर, गुर भोयथ तारे रतनागर, दुत्तर अंध बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार दिखाया, जाप ताप कश उगत न मोरी, गुर नानक सरण।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक है सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारावारे। तुमरी कृपा ते गुनगावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

गुरपूरे के चरण गए, कोड जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपनी खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक और परम पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुर अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जान के, हाथ निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट हय रे जाका अपग सब संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इसी लेना संत चरण ओ आयो शरणा आ चढ़ो हर साल ग्राम।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेख भक्त जिना को दृष्ट न पेख कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगत तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार तोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहया मानया सुख सहज इस कर का जानया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अविनाशी अगम पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया।

किस है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लह कर्म कमाई है ती पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुर अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर सो छूटे महाजा।

ते जिद गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सतसर हो आज युगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सद सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख अपार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हवन से हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो जिससे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी ते गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर साल आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा साहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर या सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा नाहे कोए जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोए नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठाए आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरी।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गरे निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किस को लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सतसंगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन दर्श देखो।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने,

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते खड़ खट खड़ खट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एकै एकै सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हौ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विद चित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान हस्यान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाय साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैदल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेल यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हार पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस कीए होमे ग्रास एक दिथाय कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिर से तन का को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रखाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन किल विखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रह गए मन माघी तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸੁਧ

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी भ्रम आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम न विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समाए ले।

रात नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाए, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोणी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मिटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदियां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

चास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ही ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जे ती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुक्म ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना फैदे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोई न जानी माया मोहे दूजे लोभानी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वसे सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ पागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उर तार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तिसना अगन बुझ नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप भुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम पोलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पौन में एक का माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सो पाया।

ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ। गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन ख्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, कर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारिया से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अनदन नामे लाए, सच कुमावे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमाण, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दोगी भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचु आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन माने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर फेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत

साल संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो ना मै रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन मागे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेखिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरयो ते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु फावे सो फला तेरे पाने कार जिरास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवां।

परम्पर सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेती संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गार बिखिया के फीके।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहागन पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखन को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहया, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर सरणागत

तन फिरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंत्र घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कह सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा महला पहला शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया की वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन।

शांत कर तीजा साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत।

तेरा गंढ लागे गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले ताकत थम्या ने कर बसया आए नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया। ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्ब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। त्यों कहे नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रभु चूका आमन जान जियो।

अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किसी जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरमुखिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, लय तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सदगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, हर सेवे पूरा सदगुरु, पुख जाए लह मेरी, गुर सिखा की पुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सदगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर घर होया, हर घर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिसकी तिसना पुख सब उतर है, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक कौ हर कृपा कर, निध जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिन्नी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम दे मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेवे।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सर कठोर कुलहीन व्याप्त मोहकीट मल परम कर्म अंग ममता मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी सरन साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो। आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुखर नायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ होना। सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस नु श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे। हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बसद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही। निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया। गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही। प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा ते हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही भाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ पाग पाईए सुख सहज समाही आसा महला पंजवा शांत कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कमला प्रपीत कमला प्रपीत है तीखण मद विपरीत है अवध अकार सजात गैबर बन कोर गैबर बन कोर है ग्रे मूस्त मन चोर है दिन करो अनदिन खात दिन खात जात बिहाद प्रभिन मिलो प्रभ करना पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूब ज्ञान हीनी तुझ बिना मुहि कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रे नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन मीना जलहीन है ओ बिशरत मन तन खीन है तत जीवन प्रे बिन होत सानमुख सहबान

संताप चितवो चितनाथ चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे मिल चाओ चाइले प्राण सुंदर तन ध्यान सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन सगल इश पूजंतिया हर कंठ लागे दिस भागे मेरे नहा सेज सोहंतिया प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी सगल करमल पय खान बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

पूर सगलिया पौलिखिया सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार पुर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आलपताल लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गले टूडिये कतना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुगम खुवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनेहो लोक सवाया सतगुर मिले सज पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सच्चो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्त।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

लग तब उपर तीर्थ सहज जोग बेबाण, लग सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण। लह सुरती लह ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ पूरा।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्ही सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया आनना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया

रसवा हो, कालजुग रास अगन का कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे सब को सच समावे। रेग कह रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर, नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोखंतर पाहे। जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन मैं रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्त अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी

पुतक जन बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जन अंत तउ मरना राज भोग अरशद्र सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाष चंदन अंत तउ मरना।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, ऐ सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जमनी हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौप दे। एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुगद फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन सुध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

मूड मैं लागे खिर मैं करे नबेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई जोत पावे सत कर मान।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

आस बड़ पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेये बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब

तन प्रभु छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जान, तुझे चरण अर बिंद पवन मान, पान करत पायो पायो रामैया तान, अरहाओ संपत बिपत पडल माया तान।

देखे देखे सुने बोले, दौड़्यो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पर संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचान्या, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समान्या, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद संग।

प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड़पागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई हरहाओ जननी केरे उदर उदकमै

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कंडे कचया।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़ी।